चेतावै चेतावन का सदका सर्ब सुख होए जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रियायत देग तेग फतेह ब्रिज की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाए खालसा जी के बोल बाले बोलना जी सिखा नु सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसाह दान प्रसादान दान

रे तुम्हारी कृपा में सुख कन्हेरे कोई ना जान तुम्हारा अंत उचेते ऊचा भगवंत सगल समगरी तुम्हारे सूत्र तारी तुमरी गात मित तुम्ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी बोलना जी वाहे गुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय श्री अंगद गुर ते अमरदास रामदास सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिह जिठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दयावे ताए सब थाई हुए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहिया दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुगतियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

चलै जह मुस्कल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाव पर हरे गुरमुख नाम जप मन मेरे नानक पाव सुह कनेरे सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंधन परे हर का नाम जपत निह तरै

देव अष्टपदी जेह प्रसाद शतीह अमृत खाए तिस ठाकुर कहो राख मन माहे। जेह प्रसाद सुगंधत तन लावे तिस कहो सिमरत परम गत पावे। जेह प्रसाद बसे सुख मंदिर तिसे त्याए सदा मने अंदर। जेह प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना। जेह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग।

कर जावे। जिह प्रसाद एरो कंचन देही, लेव लाव तिह राम स्नेही। जिह प्रसाद राव ला रहत, मन सुख पावे। हर हर जस कहत, जिह प्रसाद रे सग

साधक संघ दृढ़ सब धर्म साधक संघ केवल पार ब्रह्म साधक संघ पाए नाम निदान नान साधु कै कुर्बान साधक संघ सब कुल उधार है सात संग साजन मीत कुटम निस्तार है साधु कै संघ सो धन पावे जिस धन ते सब को वरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संघ सोभा सुर देवा साधु कै संघ पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संघ सर्वथान गम नान साध के संग सफल जनम साधक संग नहीं कथ काल दर्शन भेड़त हो त्रिहाल साधक संग रूत हरे साधक संग नरक पर हरे

सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी भुगत जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता,

सुख पावे। धनवंता होए कर गुरु पावे, त्रेण समान कै संग न जावे। बहुरस कर मानुख उपर करे आस पर पीतर, ताका होए बिना सब ते आप जाने। बलवंत खिन मह होए जाए पसमहंत, किसे नाम बदे आप अहंकारी। धर्म राय तिस करे खुआरी,

स्वर्ग फिर फिर अवतार अनक जतन करे आत्म नहीं द्रवे हर धर गय कहो कैसे गावे आपस कहो जो पला कहावे तिसे पलाई निकट नावे सर्ब की रेन जा का मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए।

सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम जस मन भसे सोतन दान सर्विच्छा तांकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब तीज पाए स्थान बोरना होए अमन जन हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम सात रिद नव निध बुद्ध ज्ञान सर्ब तै सिद्ध।

सुखमनी सब ते उजता की शोभा बनी नानक हे गुण नाम सुखमनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

जे तिस नदर न आवई तावात न पुछै के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तिहा कोई न सुजाई जे तिस गुण कोई करे।

असंगालवढ़त्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक सिर करहे पार

ज्ञान खंड का आखो कर्म, किते पवन पाणी वाय संतर, किते कान महेश, किते बरमे घाट घड़िया है रूप रंग के वेश, कितिया करम भूमि मेर केते, केते तू उपदेश, किते इंद चंद सूर केते, किते मंडल देश, किते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, किते देवी वेश, किते देव दान मुन केते, किते रतन समुंद, कितिया खाणी कितिया बाणी, किते पात नरेंद, कितिया सुरती सेवक केते।

जिनके राम बसे मन माहे, तथे भगत बसे के लोह करे आनंद सच्चा मन सोए, सचखंड बसे निरंकार कर कर वेखे नदर निहाल, तथे खंड मंडल वरभंड जे को कथे त अंत न अंत, तथे लोह लोह आकार जीव जीव।

नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेक्षीय भेवे नमो काल काले नमो सर्प नमो काल काले नमो सर्पाले नमो सर्प गौणे नमो सर्प पौणे अनंगी नाथ इंद्र संगी परमाथे नमो भान भाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो भान भाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद वादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परभंगी परमाथे समस्ती विभूते कलंक बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेशुंग परम रूपे नमो जोग जोगेशुंग परम सिद्धे नमो राज राजेशुंग परम विरुद्धे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने नमो नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेक्षीय परमी अपोगी भुगते नमो जोग जोगेशुंग परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर मे नमो प्रेत अप्रे देव सुतर मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शाह शाहंग नमो भू भूपे नमो दान दाने नमो मार माने नमो रोग रोगे नमो संग सेनाने नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सदा सच दानंद सर्वंग प्रणासी अनुपे रूपे समस्त निवासी सदा सिद्धा बुद्धा बृद्धकर्ता अदो उर्दर्दंग अगंग ओ घर्ता परंग परंग परमेश्वर प्रोषपालंग सदा सर्वदा सिद्धाता दयालंग अशेदी अभेदिया नामंग कामंग समस्तो पराजी समस्त तामंग तेरा जोर चाचरी शांत जले है थले है पीता पे है प्रभु है जो है दे सह पे सब जंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर माने समस्ते निधाने नमास्तमाते नमास्तमंग परमाते नमास्तमंग गंजे नमास्तमंग पंजे नमास्तमंग काले नमास्तमंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्पेशे नमो राजराजे नमो साजे नमो शाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्णं नमो सर्व रंगे दरभंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे खिजे बीजे समस्तं प्रसिजे कृपारं स्वरूपे कुकर्मं वरणासी सदा सर्वदा सदंग निवासी चरबड़ छंद अथवा प्रसाद अमृत कर्मे अमृत तरमे अखल जोगया चल भोगया चल राजे अटल साजे अखल तरम लख करमंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वं प्राणंग सर्वंग तरानंग सर्वं भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वं भेऊंग सर्वं काले सर्वंग पाले रुवाल छंद त्वा प्रसाद आदरूपन आदमूर्त आजोन पुरखा पार सर्वान त्रमान देव भेव आद उदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वगोपन काल जतर तथर विराज भूतरूप प्रसाद

जी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पातशाही दसवीं तवा प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख प्रयोग हर योग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे हे देश को देख रहे हो मत कौना देखित प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रती बिन एक रत्ती के माते मतंग जरे जर संग अनुपतंग सरंग सुवारे कोट तुरंग रंग से कूदत पावन के गौन को जात निवारे भारी पुजान के भूप लेवत ने आप शीसना जात बिचारे एते पय तो कहा पे भूप तंत को नागे पाए पधारे जीत फराय सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंस ही है राज हजारे पूत भूख भवान के भूपत कौन गरह नहीं जात बिचारे श्री बस श्री भगवान भजे बिनंद गुंद के धाम सिधारे तीर्थ नाहन दयादम दान संजम नेम अनेक विशेखा वेद पुराण कदेव गुरान जमीन जवान सबान के पेखा है पवन आहार जति जतार सब सब चार हजार के देखा है श्री भगवान भजे बिन भुपत एक बिन एक न लेखा है शुद्ध सिपहा दुरंद वास सास ना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीर मरोर वासन मातम तंगन मान मरेंगे श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान दान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार विचारे सार की धार पशैया तोर दे समलिंद वासन माते जान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़न हार सो बातने चक चार लवैया साहिब श्री सबको सरनायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव नंदन साजर भूत भगवान जपाएंगे जीव जिता जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपाएंगे पुण्य प्रतापन बाढ़ जैतुन पापन के व पुंज खपाएंगे साध सम प्रसन्न फ्रैजक सतर सब अवलोक छपाएंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरात्म जौंद्रलोक राज करेंगे कोट स्नान गजातक दान अनेक स्वंबर सार भरेंगे ब्रह्मेशन विशन सची पतंत फसे जम फास भरेंगे जे नर श्रीपद के ब्रह सहभग दे नर फिर देह तरेंगे कहा पयो जो दौलोचन मूंद गै बैठ रहे भक्त ध्यान लगायो नाहत फरियोलिय सात समुन्द्रन लोग गयो पर लोग गवायो बास कियो विख्यान सो बैठ गए ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साज कहूँ सुन लो सबै जिन प्रेम की हो तिन्हीं प्रपायो काहुल पाहन पूजत रहो सेर काहुल लिंग घरे लटकायो काहुल खोर बाची दिशा मह काहु पशाह को शीस निवायो कुबतान को पूजत है पास को मृतान को पूजनतायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कुबतान को पूजत है पास को मृतान को पूजनतायो पूर क्रिया उर्जो सब ही जाग श्री भगवान को भेद ना पायो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण हुए चित की इच्छा ताब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबैत मंगावो आप हाथ दे मुहे बचावो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सबाय करतारा मोर शानज करदय करे है सब बैरन को आसंग रहे हैं पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड कोई अबर न त्याहूं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिय है चुन चुन शत्रु हमारे मारिय है आप हाद मुझे उबरे मरण काल का त्रासन भरया है उजो सदा हमारे पछा श्री अस्तुजु करे हो रक्षा राख लो मोय राखण हारे साहेब सन सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बबतरा काल पाए शिव जी अवतरा

माया अगन सब एको जेही करता है खेल रचाया। जात सभाणा था जम्मिया परिवार भला पाया। लिपछड़ की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। ए माया जित हर विसरै मोह उपजय भाओ दूजा लाया। कहे नान गुर प्रसादी जिना लिभ लागी तिनी मिचे माया पाया। हर आप अमल है मुला पाया जाए। मुला पाया जाए किसे बिटो रहे लोग मिल लाए। ऐसा सतगुरु जे मिला है तिसनु सिर सौंपिया बिचों आप जाए। जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसे मन आए। हर आप अमल कह भागत ना के नानका जिन हर पल पाए। हर रास मेरी मन मन जारा हर रास मेरी मन मन जारा। सतगुरु दे राह जानी हर हर नित जपियो जियो लाहा खट्यो दिहाड़ी। यो धन तिना मिलया जन हर आपे भाणा। कह नानक हर रास मेरी मन हुआ बंजारा। ए रसना तू अंदर सराज रही तेरी प्यास ना जाए। प्यास ना जाए होर कितै जचर हरस पल्ले ना पाए। हरस पाए पल्ले पिया हर रस बहुत ना तृष्णा लागे आए। ए हरस करमी पाई है सतगुर मिले जस आए। कहे नानक होर आंदरा सा बिसरे जा हर वसे मन आए। ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया। हर जोत रखी तुद बिच ता तू जग में आया। हर आपे माता आपे पिता जिन जीव उपाय जग दिखाया। और प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया। कहे नानक शिष्ट का मोह रचया जोत राखी ता तू जग में आया। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनया। हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदिर बनया। हर गाओ मंगल नित सखिये सोग दुख ना व्यापय। गुर चरण लागे दिन सभागे आपना फिर जापय। अनत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हरस भोगो। कहे नानक प्रभ आप मिलया करन कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया। के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचा सो हर मन नाम साया। गुर प्रसादी हर मन वस्या पूर्व लिखिया पाया। कहे नान गहो शरीर परवान होवा जिन सतगुरु स्यों चितलाया। ए नेत्रो मेरे हो हर तुम मैं जो तरी हर बिन अवर ना देखो कोई। हर बिन अवर ना देखो कोई नदरी हर निहालिया। ए वे संसार तुम देख दे ए हर का रूप है हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बिजया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर ना कोई। कहे नानक ए नेत्र अंत से सतगुर मिलया देव दृष्ट होई। ए सरण हो मेरे हाओ साचे सुनना है नो पठाए। साचे सुनना है नो पठाए शरीर लाए सुनो सतबाणी। जित सुनी मंतन हरिया हुआ रसना रस समाणी। सच अलख बिराणी ताकि गत कही ना जाए। कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो साचे सुनना है नो पठाए। हर जियो गुफा अंदर राके बाजा पवन बजाया। बजाया बाजा पावन नाउ द्वारे प्रगट किए।

सुहाणे करे निवाज छुरी बगान तिन गलताग तिन घर ब्राह्मण पूरे नाद ना भी आवे उसाद उड़ी रास कूड़ा व्यापार कुड़ बोल करे आहार शर्म धर्म काढ़े राजो नानक कूड़िया भरपूर मथे टिका तेर तो तिक खाए छुरी जका साई नील वस्त्र पैरे वे प्रमाण मले धानले पुजे प्राण अब आख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना देखे चौका कड़ी कार

पूरे सतगुरु पूरे शाणे जिथे शुभ गुणा का व्यापार हुंदा इत्थे मिल जांदे ने। सतगुर शाहो गुण वेच इहदे बदले लैंदे की है औगण लेत सुन सुन जो सुजस जगत उठ धावै जी। ताई तां संसार दे लोक जड़े ने मेरे गुरु की वड्डी वड्याई कन्नां नाल सुणदे ने तां फिर सतगुरु जी दे चरणां विच आ के मेरे वाहिगुरु जी दीआं वड्याईआं करदे ने।

वाहे गुरु एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पात साहि दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लें त्याय। फिर अंगद गुरते अमरदास राम दासी होए सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है।

आप जी दा सीध प्रसाद जो छके नाम वाहिगुरु जपे श्री मुख वाग दी बख्श करो सही प्यारे मेल जिना मिले आप जिया दा नाम चेतावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आ गया पही अकाल की तबे चलायो

जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संग जी आप संगता ने अमृत वेले तो गुरु घर हाजरियां लवा के गुरबाणी कीर्तन कथा श्रवण करके लाहे प्राप्त किए हैं। सतगुरु साहब जी रहमत करन आप संगतां दी दर हाजरी प्रवान करन दरों करो नाम दान चढ़दी कला दी दात बख्शन जी। इत्थे अमृत वेले दवाना दी संपूर्णता है। शाम दे दवाना विच आप जीआं ने वत वत हाजरियां भरनियां।

गुर पावे पिंड पतल किरिया दीवा फुल हर सर पावे। हर पाया सतगुर बोले यार मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो। सतगुर पुरख जे बोलिया